0: સ્વચ્છ રહેશે અને મહત્તમ ઉષ્ણતામાન 44 સેલ્સિયસની આસપાસ રહેવાની સંભાવના છે. હવામાન સમાચાર પૂરા થયા, હવે સાંભળશું દિલ્હીથી.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં આકર્ષતા સિંહ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं. राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया. श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी. इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है. इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे.
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है. महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी. इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी. इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं. कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है. इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है. कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा. पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है. भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था. इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे. ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी. अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे. नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे. क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं. नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है. आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे. संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा. IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है. पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए. जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया. वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा. ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

गंगा तट पर श्री राम तथा सीता को रात्रि विश्राम के लिए धरती पर सोते देख निषाद राज को बहुत दुख हुआ। उनके आहत मन को सांत्वना देने के उद्देश्य से रात भर लक्ष्मण ज्ञान वैराग्य की मीमांसा करते हुए भक्ति का उपदेश देते रहे। इस प्रकार श्री राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए सवेरा हुआ। स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री राम ने बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देख सुमंत्र की आंखों में आंसू उमड़ आए। महाराज दशरथ ने उन्हें यह कहकर श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ भेजा था कि वन दिखाकर गंगा स्नान करा वो उन्हें साथ अयोध्या लौटा लाए। श्री राम को महाराज का यह संदेश सुनाकर सुमंत्र बालकों की भांति रो पड़े। राम ने अपने चरणों में गिरे सुमंत्र को उठाकर उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों का अध्ययन मनन किया है। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म पालन का अवसर सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश होगा। प्रतिष्ठावान व्यक्ति के लिए अपयश तो करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाला होता है।

0: अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमन्त्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे, भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः, नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्त वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73.8 शताधिक 79,000 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्णविद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्यसर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघ परम्पराणि प्रवर्तयितुम् अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: આકાશવાણીનું આ અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર છે. શ્રોતા મિત્રો, ફરી એકવાર માણીએ જૂની ફિલ્મના ગીતો. કાર્યક્રમ છે સદાબહાર ગીત. કાર્યક્રમના આરંભમાં સાંભળીએ લતા મંગેશકરના સ્વરમાં

0: की राहे फिल्मनु गीत। गीतकार नक्श लैलपुरी, संगीतकार मदन मोहन।
1: मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार

0: भी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त

0: रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
4: इंडिया इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
5: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और

0: दृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध
1: है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
0: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
5: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
6: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
7: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए

0: से खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India

0: संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभावी वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
0: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
0: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी
1: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
0: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
0: जी
1: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
0: जी जी जी श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
1: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
0: जी
1: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
0: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
1: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षावन से मिलता है।
0: जी
1: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में,
0: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलंबिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
1: और श्रोताओं जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
0: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
1: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
0: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
1: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
0: जी
1: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
0: जी जी जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है।
0: जी।
1: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
0: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
1: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
0: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं, इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
2: दीदी
1: राजू स्कूल से आ गए तुम?
2: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
2: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए, क्या ये सच है राजू?
2: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
2: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
1: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
2: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
2: भोजन और पानी?
1: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ?
2: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
1: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
2: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिका का।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
2: जी दे
0: चलिए दादाजी।

0: राजू सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
2: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: एक दोस्त आए यहाँ डायरेक्टर में जुबैर रिजवी, उन्होंने वहां प्रोग्राम शुरू किया शम्मे फरोजा।
1: हाँ, बहुत मशहूर था शम्मे
0: तो
1: फरोजा।
0: हम लोगों को यहां से रिकॉर्डिंग करके वो लोग उसको ब्रॉडकास्ट करते थे, शम्मे फरोजा में हमको बुलाते थे, गुजरात के मौजूदात पे, गुजराती ड्रामों के ट्रेंड पर, गुजराती शायरी के ट्रेंड पर अक्सर
1: वाह।
0: मौजूदात पे हमें प्रोग्राम वो देते थे। अब रहा सवाल यहाँ का, अहमदाबाद का।
1: अहमदाबाद बराबर।
0: 1974 में अहमदाबाद से उर्दू प्रोग्राम का आगाज हुआ जिसका उनवान था उर्दू मजलिस, और
1: बराबर,
0: उसकी इंचार्ज थी हसीना कादरी।
1: वही प्रोडक्शन करती
0: वो
1: उर्दू
0: पहले
1: का।
0: हमारी उस्ताद थी,
1: हाँ,
0: हम उनके पास पढ़ते थे,
1: वाह
0: स्कूल में टीचर थी। बाद में वो यहाँ पर उनकी मुलाजमत यहाँ शुरू हुई,
1: वाह।
0: तो उन्होंने मुझे पहली बार बुलाया तो मैंने एक अफसाना पढ़ा था, रोशनी की लकीर।
1: वाह साहब,
0: अब उस जमाने
1: बढ़िया।
0: में ये होता था कि 12:30 का टाइम होता था, प्राइम टाइम, इतवार का दिन, और पूरा शहर इस रेडियो को सुनता था कि लाओ आज
1: वाह।
0: सुने, आज कौन से टैलेंट्स आज यहाँ पर आ रहे हैं।
1: वाह
0: तो हमको भी बुलाया, हमको भी एकदम बहुत एक एक्साइटमेंट था जब रेडियो पर आने का। लोग आवाज सुनते थे, लोगों के मुबारकबाद के खतूत आते थे, वो खतूत को हसीना कादरी यहाँ पर पढ़ती थी रेडियो में।
1: तो आप कह रहे हैं कि मैं मानता हूं उस जमाने के जितने भी जो शौरा हजरात थे अहमदाबाद के, वो भी काफी यानी ऐसा शौक रखते थे कि भाई काश हमको भी रेडियो की जानिब से दावत दी जाए और हम भी अपने कलाम
0: हाँ
1: यहाँ पेश करें। और वो बहुत कोशिश करते थे, वो जमाना था कि यहाँ आकर बार बार वो अक्सर मुलाकात भी करते थे हसीना पा, या फिर उसके बाद भी जितने भी लोग आए उनको कि भाई हमारा जो हम खुद बहुत अच्छा शेर कहते हैं, हम भी शायर हैं अहमदाबाद के। ऐसे भी किस्से मैं मानता हूँ मुझे आपको भी शायद याद होंगे, मुझे भी याद हैं कि कई शौरा हजरात अहमदाबाद में जो बहुत ज़्यादा अहमदाबाद या गुजरात से ज़्यादा उनका बाहर कोई ज़्यादा
0: नहीं,
1: उनका
0: बाहर
1: जानते
0: से भी,
1: नहीं।
0: पालनपुर
1: हाँ,
0: से,
1: पालनपुर से,
0: बड़ौदा
1: हाँ,
0: से,
1: बड़ौदा से, खनिज बड़ौद भी
0: हाँ,
1: है,
0: ऐसे
1: फिर
0: बहुत
1: इस
0: सारे
1: तरह के
0: लोग
1: जो
0: हैं
1: शौरा हजरात
0: जी।
1: थे, जैसे अपने यहाँ लोकल बिल्कुल जमाल कुरैशी, फिर ऐसे
0: शरशार थे,
1: हाँ
0: रहमत
1: सरशार,
0: अमरोही थे,
1: रहमत
0: रशीद
1: अमरोही,
0: अफरोज थे,
1: रशीद अफरोज है।
0: आदिल
1: और
0: मंसूरी उन।
1: सबसे खास तो क्या है कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो मशहूर थे मोहम्मद अलवी साहब, उनका बहुत
0: जी
1: बड़ा
0: आदिल
1: रेडियो के,
0: मंसूरी,
1: आदिल मंसूरी और मोहम्मद अलवी, उनका भी इस अपने उर्दू मजलिस से और उर्दू रेडियो स्टेशन से बहुत काफी। वो दिल्ली में भी उन्होंने कई प्रोग्राम पेश किए और अहमदाबाद में तो खास
0: अच्छा एक
1: उनको
0: प्रोग्राम
1: अक्सर।
0: यहाँ शुरू हुआ था, उसमें देखता चला गया,
1: हाँ, देखता
0: उसमें
1: चला गया।
0: शहर की यहाँ जो सरगर्मियां होती थी कल्चरल और लिटरेरी, उसका एक खबरनामा पेश किया जाता था।
1: बराबर।
0: वो आदिल मंसूरी पेश करते थे, कभी कभी अलवी साहब भी पेश कर देते थे,
1: बराबर।
0: देखता चला गया।
1: हाँ
0: उसके बाद
1: हाँ
0: ड्रामे शुरू हुए,
1: हाँ ड्रामे तो ड्रामे में
0: तो आप
1: तो
0: और हम लोग सब
1: हाँ,
0: बिल्कुल
1: उसमें मुझे याद है
0: ऑडिशन
1: कि
0: के लिए आए
1: ऑडिशन
0: थे।
1: टेस्ट के लिए दिल्ली से शायद माथुर साहब आए थे
0: हाँ,
1: और काफी यहाँ के नौजवान
0: और
1: जो हाँ
0: इसीलिए तो
1: ड्रामे में
0: नए
1: हाँ
0: लिखने वाले
1: हाँ
0: जो
1: निकले।
0: हैं, कोई
1: हाँ
0: ड्रामा लिखा, कोई शायर बने, तो ये लोग इसी प्रोग्राम में
1: हाँ तो
0: शामिल
1: खास।
0: हुए।
1: हाँ, यानी कि रेडियो ने क्या है, नए जो टैलेंट है, नए जो लिखने वाले हैं ड्रामे में करने वाले, उनको काफी यानी उनकी हौसला अफजाई की, उनको यहाँ पर बुलाया, उनके बहुत सारे ड्रामे। मैं मानता हूँ मुझे एक किस्सा याद है कि जब यहाँ पर उर्दू मजलिस सादिक नूर संभालते थे उस जमाने में, रिपब्लिक स्कूल के बच्चों को यहाँ ड्रामा पेश करने के लिए बुलाया
0: जी
1: गया था, और वो ड्रामा भी वहाँ के जो टीचर है नरेंद्र पंड्या साहब, उन्होंने लिखा था जंगे आज़ादी। तो वो जब यहाँ बच्चे आए तो बहुत नर्वस थे, क्योंकि यहाँ का जो माहौल देख कर बच्चों को डर होने लगा कि ये किस तरह की ऑफिस है ये वो, कभी उन्होंने देखा नहीं था। लेकिन सादिक का जो नेचर था और उन जिस तरह से लोगों से काम लेने की उनकी जो खूबी सलाहियत थी, तो उन्होंने बच्चों को कुछ देर में इस तरह से मानूस कर दिया अपने आप से कि वो भूल गए कि वो अपनी
0: हाँ
1: स्कूल में है कि
0: जी,
1: रेडियो स्टेशन में। फिर उसके
0: खुल
1: बाद
0: जाते हैं।
1: वो रिकॉर्ड भी हुआ और बहुत खूबसूरत वो यानी ड्रामा जंगे आज़ादी नाम का ड्रामा
0: जी
1: उर्दू मजलिस में पेश हुआ था, मुझे याद है। तो वो यानी इस तरह के जो प्रोग्राम है ना, बच्चों से लेकर नौजवानों से लेकर कई खातिन भी अपने यहाँ पर अपने आते थे उर्दू मजलिस में, और उन्होंने भी अपनी यानी अदबी सलाहियत को यहाँ पर पेश किया है।
0: एक बात मुझे और

0: रही सादिक नूर की कि
1: हाँ सही है।
0: उन्हें फीचर का बड़ा शौक
1: हाँ
0: था।
1: फीचर्स बराबर।
0: वो हमें टेप रिकॉर्ड दे दिया करते थे
1: हाँ
0: और एक प्रोग्राम मुझसे करवाया था रमजान की रौनक है।
1: वाह भाई वाह, क्या बात।
0: अब वो
1: हाँ ये
0: प्रोग्राम
1: भी
0: इतना,
1: कल्चरल
0: हाँ
1: प्रोग्राम इस
0: हाँ
1: तरह
0: रमजान
1: जबरदस्त
0: के
1: है।
0: सुबह में जब शहरी को अजान की आवाज आती है,
1: हाँ
0: उसके बाद जो लोग उठते हैं और जाते हैं नमाज पढ़ने मस्जिदों में, उसके
1: हाँ
0: बाद रोजा इफ्तार का जब वक्त होता है, जब भी
1: हाँ
0: ये होता है, और बाजार में जो दुकानें होती है, जो
1: हाँ
0: फ्रूट्स
1: इफ्तार।
0: की दुकान है, जो खाने की दुकान है,
1: हाँ
0: वो
1: वो
0: तमाम का
1: सबका।
0: रिकॉर्डिंग करवाया था उन्होंने मेरे पास।
1: वाह भाई
0: वो
1: वाह
0: भी है
1: क्या।
0: दिवाली की
1: हाँ वो दिवाली
0: जो
1: के टाइम पर
0: एक
1: भी उस
0: प्रोग्राम
1: वक्त
0: दिवाली का भी
1: वहां
0: करवाया था
1: देखा।
0: मुझसे
1: हाँ
0: उन्होंने।
1: तो ये क्या है कि जब शायद मुहर्रम होता था तब मरसिया ख्वानी के लिए भी यहाँ के जो अच्छे गुजरात के और अहमदाबाद के मरसिया ख्वां
0: जी,
1: थे उनको यहाँ पर वुदू किया जाता था, और वो बहुत अच्छे अच्छे मरसिए
0: अच्छा,
1: यानी
0: इसके अलावा
1: मुहर्रम
0: भी,
1: के वक्त पर यहाँ उर्दू मजलिस से पेश हुए हैं, मुझे याद है इस तरह से।
0: जो शहर में बड़े मुशायरे होते थे, सेमिनार होते थे, हिंदुस्तान से बड़े बड़े अदीब शायर आते थे, उस प्रोग्राम का जो कंक्लूजन, उसका जो रिकॉर्डिंग होता था, वो भी यहाँ से पेश होता था।
1: हाँ उनके
0: और बेचारे
1: इंटरव्यूज
0: लोग
1: वगैरह,
0: उससे
1: उनके
0: महसूस
1: इंटरव्यूज वगैरह
0: होते थे,
1: बुला।
0: जो लोग सेमिनार में शरीक नहीं हो सके वो भी
1: हाँ
0: उससे लुत्फ हासिल
1: हाँ नहीं उसका
0: करते थे।
1: जो जो मैदान था बिल्कुल वसी था, कि
0: हाँ,
1: भाई रेडियो में जो चंद यहाँ के कई ऐसे ऑल इंडिया रेडियो में बड़े बड़े आर्टिस्ट थे गजलें गाने वाले, तो उनका हॉल में भी प्रोग्राम होता था, फिर उसी प्रोग्राम की जो रिकॉर्ड है वो अपने आम लोगों को भी यहाँ से वो लोग पेश करते थे फिर अपने प्रोग्राम्स में अलग अलग। तो उर्दू में
0: मुझसे
1: भी
0: एक
1: हाँ
0: स्क्रिप्ट लिखवाई गई थी
1: हाँ
0: गजल गायकी पर,
1: बराबर।
0: तो उसमें जैसे कि केएल सहगल, तलत महमूद,
1: बराबर
0: बेगम अख्तर,
1: बराबर।
0: मेहदी हसन,
1: गुलाम
0: गुलाम
1: अली।
0: अली, उनकी गायकी की खूबी और उनकी गायकी की झलक,
1: मोहिनुद्दीन खान साहब ने ये सब। हाँ
0: इस टाइप का एक प्रोग्राम, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ से नशर हुआ था। वो
1: बराबर
0: पूरे हिंदुस्तान में उसको पसंद किया गया था,
1: वाह
0: वो
1: भाई।
0: प्रोग्राम को भी।
1: तो नहीं अपने यहाँ गुजरात के और अहमदाबाद के जो उर्दू मजलिस के कई अच्छे प्रोग्राम यानी यहाँ पर हुए, मुझे भी एक याद आता है कि मुझे यहाँ से ऐसा कहा गया कि आप उर्दू में गीता जो है उसके ताल्लुक से अपने सामाईन जो हजरात हैं उर्दू दा तबका है या और दीगर जो भी लोग हैं उनको आप उर्दू में क्या गीता में किस तरह से उसका तर्जुमा हुआ है, तो मैंने उसका बहुत अच्छा एक मकाला लिखा था और यहाँ से पेश किया था, और उर्दू मंजूम में यानी गीता का
0: जी
1: तर्जुमा हुआ है, और ऐसे बहुत सारे अदीबों ने गीता के और कृष्ण और अर्जुन के जिस तरह के जो डायलॉग है गीता में उसको उर्दू में किस उसने खूबी से उन्होंने उर्दू के जो राइटरों ने लिखा है, और आज भी वो मौजूद है अगर हमारे जो सामईन हजरात उसको सुनना चाहते हैं तो उसके तो बहुत सारे अब यानी आप
0: रिकॉर्डिंग
1: रिकॉर्डिंग
0: जी,
1: आप सुन सकते हैं और वो आप उससे महजूज हो सकते हैं कि उर्दू में काफ़ी कुछ रेडियो ने बहुत कुछ यानी दिया है उर्दू सामईन हजरात को और सुनने वालों को। तो इस तरह से मुझे भी याद आता कि ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम।
0: नहीं याद करके सुनते थे। मतलब मैं
1: हाँ
0: रात को
1: हाँ
0: दस
1: ये
0: बजे दिल्ली से एक प्रोग्राम आता था, तो गजलें गायकी का प्रोग्राम, और वो सुन सुन कर वो धुनें जो हैं,
1: हाँ
0: मैं
1: जी
0: अभी भी मुझे बहरे नहीं आती, लेकिन वो धुनें जो थी
1: हाँ वो
0: उसी धुन को फिर ये करके फिर मैंने कहना शुरू किया ये।
1: वाह भाई
0: तो ये
1: वाह।
0: भी एक रेडियो का बहुत बड़ा कमाल था। और जो नज्म मैंने लिखी थी सिग्नेचर
1: हाँ वाह। अगर
0: जो ऑल
1: अच्छी
0: इंडिया रेडियो की,
1: आप
0: तो वो मैं सुनाना चाहूंगा।
1: आपको याद है तो आप कहिए। जैन साहब अपनी नज्म पेश कर रहे हैं।
0: नज्म का उन्वान ही यही है, ऑल इंडिया रेडियो।
1: वाह
0: नन्हे बच्चे की जमाही जैसी सुबह,
1: जमाई जैसी सुबह। वाह
0: नन्हे बच्चे की जमाही जैसी सुबह झांकती है खिड़कियों से, नीम के पत्तों पे लिखा है सबाने गीत ताजा,
1: वाह
0: वाह, नीम के पत्तों
1: पत्तों
0: पे
1: पे
0: लिखा
1: लिखा
0: है
1: है।
0: सबाने गीत ताजा, लम्स उसका है मेरे कांधे पे चिड़िया की तरह,
1: वाह लम्स उसका है मेरे
0: लम्स
1: कांधे
0: उसका है
1: मेरे कांधे
0: मेरे
1: पे।
0: कांधे पे चिड़िया की तरह, खुशबुओं के जाम भरकर पी रहा है सब्ज कोहरा।
1: वाह पी रहा है सब्ज को। वाल्टर काफ में।

0: ने पीले वाज में शिवरंजनी के सुर सजाए।
1: वाह
0: वो वाल्टर काफमैन ने पीले वाज में शिवरंजनी के सुर सजाए,
1: वाह
0: आसमां के हाल में एक तार छेड़ा साज का।
1: वाह वाह
0: आसमां के हाल में एक तार छेड़ा साज का, फिर गली में ऊंघता ये शहर सारा,
1: वाह
0: हद खुली आंखों को मलता जाग उठा।
1: वाह साहब, वही सुबह का
0: वो
1: मंजर पूरा। और वो
0: क्योंकि ये जब प्रातः काल में जब ये धुन
1: हाँ
0: बजती
1: सुबह में,
0: थी
1: हाँ
0: ना, जब धीरे धीरे पूरा शहर
1: हाँ
0: देखता,
1: पूरा
0: तो ये
1: शहर,
0: धुने आसपास में कहीं ना कहीं से हमें सुनाई
1: हाँ
0: देती थी।
1: यानी उस सुबह के मंजर को पेश करने के लिए
0: हाँ,
1: ये जो धुन थी वो बहुत ही यानी
0: यूनिक
1: मौसर थी,
0: यूनिक
1: बहुत
0: धुन थी
1: यूनिक
0: ये,
1: थी।
0: आज भी सुनने
1: और
0: का मन
1: हाँ
0: करता
1: मन
0: है
1: करता
0: जब
1: है,
0: भी
1: बहुत बहुत
0: कहीं पर
1: शानदार है
0: बजती
1: वो।
0: है
1: तो
0: धुन।
1: मुख्तसर ये कि यहाँ से बहुत बेहतरीन प्रोग्राम नशर हुए, बहुत से अदीब आए जैसे कि वारिस अलवी, शमशेरवान फारूकी, परमार थे, मैं यहाँ पर हमने डिस्कशन
0: ये किया था
1: बहुत है यहाँ पे
0: अदबी
1: जैसे
0: मौजूदात पर,
1: जी, हाँ
0: बड़े बड़े राइटरों के इंटरव्यू हमने लिए,
1: जैसे
0: वो भी
1: अली
0: यहाँ से
1: सरदार
0: नशर
1: जाफरी
0: हुए।
1: का, शायद मैं मानता हूँ कि
0: हाँ
1: आपने शायद यहाँ
0: हाँ
1: पर एक इंटरव्यू किया था, मुझे
0: और
1: ऐसा ख्याल है।
0: यानी इस तारीखी जो तसलसल है
1: हाँ
0: उसको आकाशवाणी ने बरकरार रखा है, और मैं तो उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि
1: वाह
0: वो आज
1: साहब,
0: भी बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ से
1: हाँ
0: नशर कर
1: नहीं
0: रही
1: इनकी
0: है।
1: कोशिश ऐसी रहती है कि हमारे सामाईन हजरात को उर्दू मजलिस से बेहतरीन प्रोग्राम
0: और कनेक्टेड
1: पेश
0: रहे
1: हों और
0: लोग।
1: कनेक्टेड रहे, लोगों को उसका उससे लुत्फ अंदोज हों और उनका जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे, और रेडियो की जो अभी तक वो बरकरार है यानी उसकी जो लोगों में अभी भी आज की तारीख में भी वो लोग सुनते हैं ऐसा इतना सब, यानी आज ये जो मीडिया का जिस तरह का जो सैलाब आया है उसके अंदर भी रेडियो ने अपना वजूद कायम रखा है, ये उसकी मकबूलियत का बहुत बड़ा यानी एक आईना है अपने सामने के। रौ में है रख्श उम्र, गालिब ने कहा है, न देख देखिए थमे, ना हाथ बाक पर है, न
0: नपा है
1: पाहे
0: वह
1: रकाब
0: रकाबी।
1: में।
0: वाह
1: अब इस तरह का जो माहौल है अभी के यानी अब यानी जो सामईन हजरात है वो एक एक मिनट के जो प्रोग्राम देखने के आदी हो गए हैं, वो भी कान रख कर उर्दू के और रेडियो को सुनते हैं आज की तारीख में भी। और एक बहुत बड़ा तबका है, लोग हैं वो भी आज रेडियो को अपने सीने से लगाए हुए हैं, और यही उसकी यानी कामयाबी है कि रेडियो ने आज के इस बहुत मुश्किल दौर में भी, कि जहां हर चीज को अपना वजूद कायम रखने की एक
0: जी
1: तगोदो
0: जी
1: है, किस
0: उसकी
1: तरह से
0: आज भी अहमियत उसकी
1: अहमियत
0: बरकरार
1: उसकी
0: है।
1: बरकरार है, तो वो
0: लेकिन एक
1: हम
0: बात है कि
1: हाँ
0: कई जो अभी कोई लड़कियां पीएचडी कर रही हैं और भी
1: हाँ
0: दूसरे लोग जो हैं,
1: हाँ
0: तो उनको इनवाइट करना और उनको मौजूद देना, मौजूदात
1: आइए
0: वगैरह भी देना
1: आइए
0: कि भाई इस पे चाहिए
1: आप
0: हमें
1: चाहिए, सही है
0: या,
1: सही है।
0: तो उनको भी बुला के एक एनकरेजमेंट इस तरह
1: हाँ
0: करना, ये बड़ी बात होती
1: यानी
0: है
1: ये प्रोग्राम
0: ना।
1: में तनव्वो जिसको पेश करना जिसे वो कह सकते हैं कि हम, और इसी तरह से अगर आप अच्छे प्रोग्राम पेश करेंगे तभी लोगों का जो दिलचस्पी है बरकरार रहेगी। तो हम आइंदा भी इस तरह की उम्मीद रखते हैं कि ये रेडियो आकाशवाणी इसी तरह से रवां दवा रहे, अपना उसका जो काफिला है वो इसी तरह से
0: चलता
1: चलता रहे और लोग इससे महजूज होते रहें,
0: हवा के
1: और
0: दोष
1: हाँ
0: पे बहती
1: हाँ
0: हुई आवाज के साथ ही।
1: साथी हाँ, और ये जो नवाए सरोश कहते हैं जिसे आकाशवाणी, वो भी वो प्रसार भारती के मातहत अपना वजूद
0: जी
1: कायम और दायम रहे, ऐसी हम अल्लाह
0: उम्मीद
1: से
0: करते हैं और
1: हाँ दुआ
0: गुजार।
1: भी करते हैं और गुजार, और सामईन हजरात से ये गुजारिश भी है कि आप अपना जो ताल्लुक है इसी तरह रेडियो से बरकरार रखिए और इसी तरह से हमारे जो प्रोग्राम को सुनते रहिए। बस आखिर में हम आपसे ये कहकर
0: शुक्रिया,
1: अपनी बात
0: बहुत बहुत
1: खत्म
0: शुक्रिया।
1: करते हैं।
2: तो साहिबान, ये थे हमारे आज के मौजूद मेहमान जनाब जयंत परमार, शफ़त कादरी और गुलाम फरीद शेख के दरमियान हुई गुफ्तगू, जिसमें आप तीनों ने आकाशवाणी के 90 साल सफर पर मुबारकबाद देने के साथ साथ आकाशवाणी से जुड़े अपने अपने तजर्बात साझा किए। हमें पूरा एतबार है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। جیسا کہ ہمارے ریڈیو کی روایت رہی۔

है, हम अच्छे से अच्छी पेशकश लाते हैं, आला दर्जे के मेहमान मधु करते हैं और आप तक एक उम्दा प्रोग्राम पहुंचे इसमें कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ये लगन, ये ललक हमें विरासत में मिली है हमारे सीनियर्स से। हमसे कबल जो प्रोड्यूसर्स काम करके गए हैं, जिस तरह का काम करके गए हैं, वो कायम रखने की हमारी पुरजोर कोशिश रहती है ताकि आकाशवाणी नवाए सरोज बनी गूंजती रहे घर घर में, हर दिल में।

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। 8 जून 1936 थी आपनी सेवा में रहेली आकाशवाणी 90 वर्ष थी समाज में सचोट माहिती शिक्षण अने सात्विक मनोरंजन पूरु पाड़ी रही छे। आजे समग्र भारत में लगभग 591 स्टेशनों नु संचालन करी रही छे। आकाशवाणी ना सूत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ने साकार करता आज आकाशवाणी भारत ना 92% भौगोलिक विस्तार में

0: શ્રોતા મિત્રો, આપ સાંભળી રહ્યા છો આકાશવાણીના અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ અને ભુજ કેન્દ્રનું પ્રસારણ. બરાબર 1 વાગે આપ સાંભળશો દિલ્હીથી પ્રસારિત હિન્દીમાં સમાચાર.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં કનકલતા. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे. दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे. हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा. आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है. प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे. ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है. रोम से सुपर्णा भाटिया.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं. उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की. प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है. एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की. उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है. विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए. देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था. पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है. चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की. ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है,

0: आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा राजकोट और भोज प्रस्तुत हैं फौजी दोस्तों के लिए कार्यक्रम जय भारती।
1: जय भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों आज के कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजों में छोटी बहन फिल्म का गीत, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

आइए अब सुनते हैं प्रेम धवन के लिखा, हंसराज बहल का संगीतबद्ध किया मिस गुडनाइट फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में।

फिल्म का नाम है टांगे वाली, आवाज है लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की, बोल प्रेम धवन के, संगीत सलील चौधरी का।

आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में हावड़ा ब्रिज फिल्म का गीत। गीतकार कमर जलालाबादी, संगीतकार ओपी नैयर।

अय्यूब सुनते हैं शेवान रिजवी का लिखा, ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया हम साया फिल्म का गीत, आशा भोंसले की आवाज में।

फिल्म का नाम है खेल खेल में, आवाज है आशा भोंसले और आर डी बर्मन की, बोल गुलशन बावरा के, संगीत आर डी बर्मन का।

जिन था, उसकी आंखों में नशा, बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी। बिजली की तरह नाचता हुआ वो मेरे पास आता था, गाता था, नाचता था। मैं

0: जय भारती कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा, आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया अमर प्रेम फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में।
1: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा, आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया कटी पतंग फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज में।

फिल्म का नाम है आराधना, आवाज किशोर कुमार की, बोल आनंद बख्शी के, संगीत एच डी बर्मन का।

और दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में हम किसी से कम नहीं फिल्म का गीत। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आरडी बर्मन।

जय भारती। ये था फौजी दोस्तों के लिए कार्यक्रम, प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भूज केंद्र से किया गया। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित दोपहर समाचार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MB3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov

0: rtv.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती

0: राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य है अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के दो जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज पेइचिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से पेइचिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इटली द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इटली के रोम में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी में मुख्य केंद्र हैं।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि श्री मेलोनी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा और ऊर्जा मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की सभ्यता बहुत पुरानी है।
1: रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं

0: तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती। इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं।
1: हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिजियंस गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह आत्मनिर्भर भारत के पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। उन्होंने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक जनहित याचिका का जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्ति में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के गांधरबल में कश्मीरी लड़ाकों द्वारा सेना के वाहन पर हमले के बाद सैनिकों के मारे जाने की सोशल मीडिया की खबरों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तंत्र जांच इकाई ने बताया कि क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड में लू चल सकती है, जबकि असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: આકાશવાણીનું આ અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર છે। શ્રોતા મિત્રો, આજની બીજી સભામાં પ્રસારિત થનારા કાર્યક્રમોથી આપને માહિતગાર કરીએ।

0: नमस्ते, हीअ आकाशवाणी आहे। हाणे तव्हीं माला खूबचंदाणी खां ख़बरूं ॿुधंदा। सभ खां अवल मुख्य ख़बरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ अॼु रोम में इटलीअ जी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनीअ सां वफ़द सतई मज़ाकरात कई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ ऐं जॉर्जिया मेलोनीअ हिकु वंडियल लेख में भारत इटली अहमियत भरियल रणनीतिक भाङे भाईवारी ऐं आर्थिक अवाइली क़दमनि जो ज़िक्र कयो। DRDO बग़ैर इंसान जे ड्रॉन मिसाइल ULPGMV3 जो कामयाबी सां आज़माइशी तजुर्बो कयो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अॼु सियोल में ॾखण कोरिया जे रक्षा मंत्रीअ सां मुलाक़ात कई। सुप्रीम कोर्ट जाती आधारित आदमशुमारी गणप करण वारे मर्कज़ जे फ़ैसिले खे ललकारींदड़ अर्ज़ी ख़ारिज कई। उत्तर ऐं विच भारत में लूअ जो कहर जारी ऐं IPL क्रिकेट में अॼु शाम जो कोलकाता नाइट राइडर्स जो मुक़ाबिलो मुंबई इंडियंस सां। हाणे ख़बरूं तफ़सीलवार ॿुधंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ अॼु रोम में इटलीअ जी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनीअ सां वफ़द सतई मज़ाकरात कई। इन ॻाल्हि ॿोल जो मक़सदु मुख्य खितनि में ॿिन्ही मुल्कनि जे रिश्तनि नातनि खे वधीक मज़बूत करणु आहे। बैठक में तिजारती वापार, सीड़प, तकनीक, रक्षा, साफ़ सुथरी शक्ति, रणनीतिक हिसेदारियुनि में सहकार वधाइण ते ख़ासि ज़ोर ॾिनो वियो। ॿिन्ही रहनुमाउनि आपसी मुफ़ाद सां जुड़ियल इलाक़ाई ऐं आलमी सूरतहाल ते पिण बहस मुबाहिसो कयो। इहा ॻाल्हि ॿोल भारत ऐं इटलीअ जे विच में वधंदड़ रणनीतिक भाङे भाईवारीअ खे ज़ाहिरु करे थी, जंहिं में आर्थिक सहकार ऐं माण्हुनि जे विच में लाॻापन खे वधाइण ते ख़ासि बल ॾिनो वियो। वफ़द सतह जी ॻाल्हि ॿोल खां पोइ ॿिन्ही अॻवाननि प्रेस कॉन्फ्रेंस में गॾियल बयान जारी कयो। श्री मोदीअ पधिराई कई त भारत ऐं इटली पंहिंजनि ॿितरफ़ी लाॻापन खे ख़ासि रणनीतिक भाङे भाईवारीअ जी सतह ताईं पहुचाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे।
1: यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है।

0: रहता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: श्री मोदी भारत ए यूरोप के विच में रिश्तन नातन के वधिक मजबूत बनाने में इटली के सहकार की सारा कई। उन उभरंदड़ तकनीक मैन्युफैक्चरिंग तोड़े लगातार विकास के खेतन में आपसी सहकार की अहमियत से रोशनी विधि। बिन्हीं अगवानन आलमी ललकारों ए सलामती से जुड़ियल मुद्दन से सहकार वधायण से गडोगड पैं सिफारती ए आर्थिक लागापन के वधिक मजबूत करण वारी पैंजी वचनबद्धता दोहराई।
0: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: हेल जे सालन में भारत इटली रिश्तन नातन में बेमिसाल तरक्की थी आहे। हाणे ए लागापा फैसले जोगे मोड़ ते पहुंची चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए इटली जी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनिया गडल लेख में चयो त बिनी मुल्कन जे विच में लागापा एक खुशगवार दोस्ती खां वधी करे एक खास रणनीतिक भांगेबाईवारी में पहुंची चुका है। बिन्हीं अगवानन चयो त अड़े वक्त में जडे आलमी व्यवस्था में तमाम घणा बदलाव थी रहा है तदे भारत इटली भांगेबाईवारी आला तरीन सियासी ए धाराई सतहों ते बाकायदे तबादलन जी रहनुमाई करे थी। बिन्हीं नेताओं चयो त भारत ए यूरोपियन संघ जे विच में तजवीज कयल मुक्त व्यापार समझौतो बिन्हीं मुल्कन में व्यापार ए सीड़पकारी जे वहकरे के वधायण जे लाए रस्तो हमवार कंदो। हिफाजती मंत्री राजनाथ सिंह अज सियोल में दक्षिण कोरिया जे हिफाजती मंत्री ली योंग चुल सा मुलाकात कई। श्री राजनाथ सिंह चयो त बैठक जे दौरान बई पख गडियल विकास गडियल पैदावार ए गडियल रवानगी जा वज पैदा करण जे लाए आपसी कोशिशन जो फेज वठण ते रजामंद थिया। उन चयो त बिनी मुल्कन जे नवाचार इकोसिस्टम के पाण में गंढण वारी वड खयाली काइंड एक्स पहल जी सग के मुकमल नमूने इस्तेमाल करण जे वास्ते एक रोड मैप ते पिण गुफ्तगु कई वई। ही खबरूं तवी आकाशवाणी तां बुधी रहा आयो। ही खबरूं तवी असांजी यूट्यूब चैनल एयर न्यूज गुजरात ते पिण बुधी सघो था। वधिक खबरन जी तफसील जे लाए तवां असांजी वेबसाइट newsonair.gov.in के फॉलो करे सगो था। मुल्क आत्मनिर्भर भारत पहल जे तहत स्वदेशी रक्षा सघुन के मजबूत करण तरफ एक वधिक अहम हासिलात हासिल कई आहे। रक्षा खोजना ए विकास संगठन DRDO अनमैंड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGMV3 जी आखिरी विकास आजमाइश के कामयाबी से मुकमल कयो आहे। या मुल्क जे रक्षा खिते जे लाए एक अहमियत भरी हासिलात आहे।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ULPGMV3 मिसाइल जी कामयाब विकास आजमाइशन जे लाए DRDO जाहिर खिते जे इधारन रक्षा सा गडोगड उत्पादन बांगे भाईवारन ए उद्योग जगत जी सारा कई। श्री सिंह इनके रक्षा खिते में आत्मनिर्भरता दा एक रणनीतिक हासिलात सदायो। सुप्रीम कोर्ट आदमशुमारी गणप 2027 जे तहत जात ते आधारित आदमशुमारी गणप कराण जे सरकार जे फैसले के ललकारींदर अर्जी के अज खारिज कयो आहे। अदालत चयो आहे त इहो मुद्दो सरकार जे नीतिगत हक खिते में ईंदो आहे। मुख्य जज

0: जो सूर्यकांत जी सिद्धार्थ वारी बेंच चयो त पुठिते पियल तबकनि वास्ते कल्याणकारी उपाव तयारु करण जे लाइ सरकार खे संदसि तइदाद ॼाणणु ज़रूरी आहे। सुप्रीम कोर्ट अॼु मर्कज़ तोड़े सभिनी राज्यनि ऐं मर्कज़ी ज़ेरसर रियासतुनि खां हिकु PIL दरख़्वास्त ते जवाबु तलब कयो आहे। इन में सरकारी कानूनी पैनलुनि ऐं कानूनी अमलदारनि जी मुक़ररियुनि में महिला वकीलनि जे लाइ 30% महफ़ूज़गीअ जी घुर कई वई आहे। मुख्य जज सूर्यकांत जी सरबराईअ वारी बेंच हिकु ट्रस्ट जी अर्ज़ीअ ते नोटिस जारी कयो। IPL क्रिकेट में अॼु कोलकाता नाइट राइडर्स जो मुक़ाबिलो मुंबई इंडियंस सां थींदो। इहा मैच कोलकाता में शाम जो 7:30 बजे खां शुरू थींदी। अॼु बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सेंसेक्स 118 पॉइंट वधी करे 75,300 ते बंदि थियो। होॾां निफ्टी 41 पॉइंटनि जी वाधि दर्ज कंदे 23,659 ते पहुतो। आबहवा महकमे हिन हफ़्ते उत्तर ओलह ऐं विच भारत में लूअ जा इम्कान ज़ाहिर कया आहिनि। ईंदड़ 4 ॾींहनि ताईं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना ऐं उत्तराखंड में गरम हवाऊं लॻण जा इम्कान आहिनि, जॾहिं की असम, मेघालय, केरल, माहे, ओलह बंगाल जे तराईअ वारनि इलाइक़नि, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तोड़े अंडमान ऐं निकोबार उपबेट मेड़ में सुभाणे ताईं तेज़ बरसाति थी सघे थी। ओॾां राजस्थान जा घणाई ज़िला हिन वक़्तु सख़्तु लूअ जी चपेट में आहिनि। आबहवा महकमे अॼु राज्य जे 2 ज़िलनि में लूअ जी सूरत हाल खे ध्यान में रखंदे ऑरेंज अलर्ट, जॾहिं की 14 ज़िलनि जे लाइ येलो अलर्ट जारी कयो आहे। गुजरात में कच्छ जे सरहदी ज़िले खे राजस्थान ऐं राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीअ सां ॻंढण वारी हिकु नई रेल शेवा जल्दी शुरू थियण वारी आहे। ओला रेलवे हिकु नई रेल शेवा शुरू करण जूं तयारियूं मुकमल कयूं आहिनि। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव हिन जुमे ॾहाड़े ते रेल गाॾीअ खे साई झंडी ॾेखारे रवानो कंदो। आख़िर में मुख्य ख़बरूं हिकु वार ॿीहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ रोम में इटलीअ जी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनीअ सां वफ़द सतही मज़ाकरात कई। प्रधानमंत्री मोदीअ ऐं जॉर्जिया मेलोनीअ हिकु वंडियल लेख में भारत इटली अहमियत भरियल रणनीतिक भाईवारी ऐं आर्थिक अवाली क़दमनि जो ज़िक्र कयो। DRDO बग़ैर इंसान जे ड्रोन मिसाइल ULPGMV-3 जो कामयाबी सां आजमाइशी तजुर्बो कयो। ऐं IPL क्रिकेट में अॼु शाम कोलकाता नाइट राइडर्स जो मुक़ाबिलो मुंबई इंडियंस सां। इते ख़बरूं पूरियूं थियूं। नमस्ते।
1: આકાશવાણીનું આ અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર છે।
2: શું તમે તૈયાર કરો છો હીટ સ્ટ્રોક થી બચવાની? ગરમીમાં લૂ લાગવાથી બચવા માટેના ખાસ પગલા: હીટ વેવ દરમિયાન બહાર નીકળવાનું ટાળવું, આખું શરીર અને માથું ઢંકાય તેવી રીતે સફેદ સુતરાઉ કપડાં પહેરવા, ટોપી, ચશ્મા, છત્રીનો ઉપયોગ કરવો, વારંવાર પાણી પીવું, લીંબુ શરબત, મોળી છાશ, નારિયેળનું પાણી તથા ORS પુષ્કળ પ્રમાણમાં પીવું। લૂ લાગવાના લક્ષણો: માથું દુખવું, પગની પેઢીઓમાં દુખાવો થવો, શરીરનું તાપમાન વધી જવું, ખૂબ તરસ લાગવી, ઉલટી થવી, ઉબકા આવવા, ચક્કર આવવા, આંખે અંધારા આવવા, બેભાન થઈ જવું, અતિ ગંભીર કિસ્સામાં ખેંચ આવવી। હીટવેવની ચેતવણીના દિવસોમાં બપોરે 2 વાગ્યાથી 4 વાગ્યા સુધી બહાર નીકળવાનું ટાળવું। લૂ લાગવાની અસર જણાય તો તાત્કાલિક નજીકના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનો કે સરકારી દવાખાનાનો સંપર્ક કરવો। ગુજરાત સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી દ્વારા જનહિત।
3: મન કી બાત હૈ જન જન કી, સભી કી કુછ અપની સી, સંઘર્ષો કે કુછ કિસ્સે, કહાની કુછ સફળતાઓ કી, અનકહી વિરાસત કી, ઉમ્મીદે નયે ભારત કી। મહિને કે આખરી રવિવાર કા રહેતા હૈ ઇંતઝાર, મલિયાચલ કે આંચલ સે વિંધ્યાચલ કે આંગન તક, બ્રહ્મપુત્ર કે ઘાટ સે હિમાલય કે વિસ્તાર તક, હોતી હૈ મન કી બાત પ્રધાનમંત્રી કે સાથ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: आ उनाड़ामा सुरक्षा सूचनों नु पालन करो अने लू थी बचो।
5: हीट वेव એટલે કે લૂથી બચવા બપોરે 2 થી 4 વાગ્યા સુધી બહાર નીકળવું નહીં અને માથું સુતરાઉ સફેદ કાપ

आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा, आप सुन रहे हैं युवा मित्रों के लिए विशेष कार्यक्रम युववाणी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम जहां बात होती है सपनों की, आत्मविश्वास की और उस नई सोच की जो जिंदगी को बेहतर बना सकती है। मैं हूं आपकी दोस्त रुत्वी पवार और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो सुनने में बहुत छोटा लगता है लेकिन जिसकी ताकत जिंदगी बदल सकती है। छोटे बदलाव, बड़े परिणाम। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, बड़ी सफलता पाने के लिए बहुत बड़ा टैलेंट चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए या फिर कोई जादू आना चाहिए। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वह तो धीरे धीरे बदलती है। हर दिन की छोटी आदतें, छोटे फैसले, छोटी सोच मिलकर एक दिन बहुत बड़ा परिणाम देती है। एक छोटा बीज ही आगे चलकर विशाल पेड़ बनता है ना। एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बदल सकती है और एक छोटा सा सकारात्मक कदम किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, हमारे पास सपने बहुत है, ऊर्जा बहुत है, लेकिन कई बार हम जल्दी परिणाम चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर तुरंत सफलता नहीं मिली तो शायद हम सही रास्ते पर नहीं है। लेकिन प्रकृति हमें क्या सिखाती है? सूरज भी धीरे धीरे उगता है, नदी भी तो बूंद बूंद से बनती है ना, और इसी तरह इंसान भी छोटे छोटे प्रयासों से महान बनता है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कैसे सुबह का पहला 1 घंटा हमारे पूरे दिन का मूड तय कर देता है? अगर सुबह उठते ही हम मोबाइल खोल दे तो मन भटक जाता है, लेकिन अगर हम सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकाले, थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ा ध्यान, थोड़ी प्रार्थना या बस खुली हवा में गहरी सांसें ले, तो पूरा दिन हल्का और सकारात्मक लगता है। यही तो है छोटा बदलाव। हर सफल इंसान

की जिंदगी में कुछ छोटी छोटी आदतें जरूर होती है। कोई रोज पढ़ता है, कोई रोज सीखता है, कोई रोज खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वही छोटी आदतें उनकी पहचान बन जाती है। हम आगे बढ़े इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक ऐसा सदाबहार गीत जो हमें सिखाता है कि जो भी होगा वो होकर ही रहेगा।

0: हम जैसे खुद से बात करते हैं, वैसे ही हमारा मन बनता जाता है। इसीलिए खुद को हमेशा प्रोत्साहित कीजिए, खुद के दोस्त बनिए। दोस्तों, आपको पता है कि अगर जीवन में सबसे कीमती चीज कुछ है तो वो क्या है? वो है समय। और सबसे अच्छी बात यह है कि छोटे छोटे समय का सही उपयोग बहुत बड़े परिणाम ला सकता है। अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट कोई नई चीज निरंतर सीखते हैं, 1 साल बाद आप खुद में बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। रोज थोड़ा पढ़ना, थोड़ा लिखना, थोड़ा सीखना, वही छोटी आदतें आगे चलकर आत्मविश्वास बढ़ाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब शुरू करेंगे, लेकिन सच यह है कि शुरू करने से ही सही समय बनता है। कुछ उसी तरह बात करते हैं रिश्तों की। वह जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत होते हैं, और रिश्ते बड़े बड़े उपहारों से नहीं, छोटी छोटी बातों से मजबूत होते हैं। घर पहुंचकर माता पिता से मुस्कुराकर बात करना, दोस्तों की बातें ध्यान से सुनना, सही हो तो किसी की तारीफ करना, मदद मिलने पर धन्यवाद अवश्य कहना, यही छोटी बातें दिलों में जगह बना लेती है। आज की तेज जिंदगी में लोग शीघ्र ही अपनापन चाहते हैं, इसीलिए अपने रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि जिंदगी की असली खुशी अपने लोगों से ही मिलती है। सफलता की राह में हम अक्सर बड़ी बड़ी जीत ढूंढते हैं, लेकिन असल में जीत उन्हीं छोटी छोटी आदतों में छुपी होती है जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। तो चलिए सुनते हैं परिणीता राज की बात डिग्री वर्सेस स्किल के बारे में।
1: मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं परिणीता राजपूत आज आप सबसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। ये वो विषय है जिसकी बदौलत हम समाज में जाने जाते हैं, अपना नाम और पहचान बनाते हैं और समाज में सिर उठाकर जी पाते हैं। कई लोगों को हमारे आज के विषय के बारे में अंदाजा आ गया होगा। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अभी भी हमारे आज के विषय को लेकर सोच में डूबे हुए होंगे। चलिए, आप सभी की विचारधारा को विराम देते हुए हम हमारे आज के विषय पे से पर्दा उठाते हैं। हमारा आज का विषय है डिग्री या स्किल, यानी कौशल। आज के समय में कई ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि क्या अच्छी नौकरी पाने के लिए केवल एक डिग्री काफी है? क्या कौशल के दम पे एक व्यक्ति नौकरी के काबिल कहला सकता है? डिग्री ज्यादा जरूरी है या कौशल? वास्तविकता में ना डिग्री ज्यादा जरूरी है ना ही कौशल। दोनों गाड़ी के दो पहिए जैसे हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे और ना ही एक दूसरे के बिना उपयोगी। कुछ लोग ये मानते होंगे कि डिग्री का महत्व ज्यादा है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके नजरिए से कौशल का महत्व ज्यादा है। पर असलियत में देखा जाए तो डिग्री आपको एक एंट्री टिकट देती है या नौकरी के इंटरव्यू तक पहुंचने का एक जरिया देती है। वहीं आपका कौशल ये तय करता है कि आप उस नौकरी को कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। डिग्री दीर्घकालिक समर्थन प्रदान करती है, वहीं कौशल अल्पकालिक संतुष्टि देती है। अगर आपके पास किसी भी क्षेत्र में एक डिग्री है तो आप उस क्षेत्र में काम करने के लिए योग्य कहला सकते हैं, पर बिना डिग्री का कौशल जैसे अंधों में काना राजा। इस बदलते समय में जहां चीजें और टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, केवल डिग्री ही स्थिरता प्रदान करती है। आपके मन में सवाल आएगा कि कैसे? तो सुनिए, 2026 AI का जमाना है, बाजार में नए ट्रेंड्स के अनुसार चलना होगा। वहीं अगर किसी व्यक्ति ने AI प्रणाली का ज्ञान प्राप्त किया होगा या डिग्री हासिल की होगी तो वह उससे लंबे समय तक उत्पादन प्रदान करेगा। डिग्री से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं कौशल से हमें उस ज्ञान का उपयोग कब और कहाँ करना है ये पता चलता है। डिग्री एक बार मिल जाती है, लेकिन स्किल्स को लगातार अपग्रेड यानी अपस्किल करना पड़ता है। जब इंसान के पास स्किल होती है तो वो कामयाब कहलाता है, लेकिन जब इंसान के पास डिग्री या उससे आने वाला ज्ञान हो तो वो महान कहलाता है। अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, ये सब अपने कौशल के बल से कामयाब कहलाए, परंतु कई सारे वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर जैसे CV रमन, APJ अब्दुल कलाम अपने ज्ञान के द्वारा महान कहलाए। ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं जिसमें केवल कौशल के बल पर सफलता हासिल की जा सकती है। वहीं कई ऐसे भी व्यवसाय हैं जिसमें डिग्री अनिवार्य है। कई अभिनेता हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती, लेकिन वह अपने जीवन में कामयाब हैं अपने कौशल के सहारे। लेकिन वहीं जब हम एक कंपनी में HR की नियुक्ति के लिए जाएं, तो वहाँ हमारे कौशल से पहले हमसे हमारी डिग्री पूछी जाएगी। हमारे देश में डिग्री की बहुत वैल्यू है। डिग्री की सच्चाई ये है कि आपको चांस पहले मिलता है। एक उदाहरण से समझें तो मान लो आप एक स्टूडेंट हो और आपके सामने दो टीचर हैं, एक के पास बीकॉम की साधारण सी

आप सुन रहे थे पुकार फिल्म से के सेरा सेरा, जिसके गायक कलाकार हैं शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति। दोस्तों, हमारी जिंदगी पर हमारे शब्दों का बहुत असर होता है। अगर हम हर बात पर बोले मुझसे नहीं होगा यार, तो हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। लेकिन अगर उसी तरह हम सिर्फ इतना कह दे मैं कोशिश करूंगा, तो अंदर नई ऊर्जा सी आ जाती है। तो छोटा बदलाव क्या हो सकता है, याद रखिए।

0: डिग्री है, वहीं दूसरी तरफ एक सीए पास है, तो आप किससे पढ़ना पसंद करोगे? आपका सीधा सीधा जवाब होगा, सीए पास टीचर से ही पढ़ेंगे। तो इसमें आपने पहला चांस किसको दिया, जिसके पास अच्छी डिग्री थी? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीए किए हुए लोगों से भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें पहला चांस नहीं मिला। 1990 में एक डिग्री काफी थी किसी भी इंसान को काम दिलाने के लिए, लेकिन अब 2026 है। आज जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपकी स्किल्स या हुनर। डिग्री जरूरी है, पर आज की हकीकत ये है कि सिर्फ डिग्री काफी नहीं है एक अच्छे भविष्य के लिए। डिग्री सिर्फ एक रास्ता खोलती है, जबकि स्किल्स उस रास्ते को हमेशा खोले रखने में और जारी रखने में मदद करती है। ज्ञानी इंसान अगर पैसा नहीं कमा पाता तो सबसे ज्यादा परेशान वही इंसान होता है। उसे ना सिर्फ व्यावसायिक बल्कि मानसिक और सामाजिक परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक कार है लेकिन फ्यूल नहीं, तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? वहीं दूसरी तरफ आपके पास फ्यूल तो है लेकिन कार नहीं, तो फिर से आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। यहाँ कार और फ्यूल का मतलब डिग्री और स्किल से है। सिर्फ डिग्री के साथ ग्रोथ धीमी हो सकती है और सिर्फ स्किल के साथ पहचान बनाने में वक्त लग सकता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो करियर को एक नई गति मिलती है, क्योंकि आप योग्य भी हैं और सक्षम भी। आज की इस भागदौड़ भरी और कठिन प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया में हम अक्सर दूसरों को देखकर अपने जीवन के फैसले लेते हैं। हम ये देखते हैं कि शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन गया या कोई पड़ोसी डॉक्टर है, और बिना सोचे समझे उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ठहर के ये सोचा है कि आप वास्तविकता में कौन हैं? सबसे बड़ी चुनौती दूसरों से आगे निकलना नहीं बल्कि खुद को पहचानना है। हमें अक्सर दूसरों के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं, ये भूलकर कि हर व्यक्ति के अंदर एक यूनिक टैलेंट छिपा होता है। कोई जन्मजात कलाकार होता है तो कोई तकनीक में माहिर। जब तक आप अपनी उस छिपी हुई खूबी को नहीं पहचानोगे, तब तक आप केवल एक औसत जीवन ही जी पाएंगे। अपनी रुचियों को खोजना अब केवल एक शौक नहीं बल्कि आज के समय की एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। यदि आप अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं तो शांत बैठकर स्वयं से ये प्रश्न पूछें, मेरी असली क्षमता क्या है? मैं वास्तव में क्या सीखना चाहता हूँ? मैं दुनिया में क्या योगदान दे सकता हूँ? जब एक युवा अपनी क्षमता को जान लेता है तो वह केवल अपने भविष्य की चिंता नहीं करता बल्कि वह सकारात्मक बदलाव का नेतृत्व करने लगता है। याद रखिए, दुनिया को आपकी कॉपी की जरूरत नहीं है, दुनिया को आपके ओरिजिनल अवतार की जरूरत है। डिग्री और स्किल में से किसी एक को चुनना गलत है। अगर आपके पास डिग्री है तो उसे अपनी स्किल के साथ मजबूत बनाएं। डिग्री नहीं भी है तो हुनर सीखकर आप दुनिया जीत सकते हैं। अंत में मैं बस यही कहूंगी कि डिग्री की चमक के साथ साथ कौशल की दमक भी लाएं। किताबी कीड़े ना बने बल्कि सीखने वाला बने। धन्यवाद।
1: और परिणीता की यही बात हमें सिखाती है कि स्किल्स पर काम करना एक छोटा बदलाव है जो आगे चलकर बड़े नतीजे लाता है। दोस्तों, आज की यह मॉडर्न जिंदगी में सोशल मीडिया हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। वह तो एक सीखने का माध्यम भी है और प्रेरणा का भी, लेकिन यह भी एक छोटा बदलाव जरूरी है। हर समय तुलना करने की बजाय खुद की प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। सही है ना दोस्तों? हर किसी की यात्रा अलग होती है, कोई जल्दी आगे बढ़ता है, कोई धीरे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम रुके नहीं। याद रखिए, धीमी गति भी प्रगति ही है। वैसे ही दोस्तों, अगर जिंदगी में बड़े सपने पूरे करने हो तो सबसे पहले खुद का ध्यान रखना जरूरी है। स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नहीं होता, वह मन का भी होता है। हम सोचते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत मुश्किल काम करना पड़ेगा, लेकिन नहीं। रोज थोड़ा चलना, पानी थोड़ा ज्यादा पीना, अच्छी नींद लेना, थोड़ा हंसना, यह छोटे बदलाव शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाते हैं, और एक स्वस्थ शरीर ही बड़े सपनों की ताकत झेल सकता है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। कई बार चीजें हमारे योजना के अनुसार नहीं होते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रास्ता खत्म हो गया है। कभी कभी जिंदगी हमें एक नया रास्ता दिखा रही होती है। एक छोटा बदलाव यहाँ पर भी जरूरी है। हर अनुभव को सीख की तरह देखना चाहिए। जब सोच बदलती है ना, तो परिणाम भी बदलने लगता है। जिंदगी भी तो एक सफर ही है, हर मोड़ पर कुछ नया सिखाती हुई। तो चलिए, इसी एहसास के साथ सुनते हैं तमाशा फिल्म से सफरनामा, जिसके गायक कलाकार है लकी अली।

भारत हमारे जैसे युवाओं का देश है, और युवाओं की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? नई सोच, नई ऊर्जा और बदलाव लाने का साहस। अगर हम रोज एक छोटा सकारात्मक बदलाव करें तो परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। कल्पना कीजिए, अगर हम रोज एक पेड़ लगाए, एक व्यक्ति की मदद करें, एक नई चीज सीखे या एक सकारात्मक बात फैलाए, तो कितना बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले क्या ही बदलाव ला सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, हर बड़ी क्रांति की शुरुआत एक छोटे कदम से ही हुई थी। एक छोटा दीपक भी अंधेरे को चुनौती दे सकता है। इसीलिए खुद पर विश्वास कीजिए, आपके छोटे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। आज की मेहनत कल की पहचान बन सकती है। सपने देखना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है रोज उनके लिए थोड़ा थोड़ा काम करते रहना। एक पन्ना रोज पढ़ना, समझना, एक कदम रोज आगे बढ़ना, हर एक गलती को सुधारते रहना, वही सफलता का रास्ता है। दोस्तों, किसी भी मंजिल तक पहुंचने का राज यही है कि चलते रहो, भले धीरे चलो, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। कभी कभी जिंदगी में बस चलते जाना ही जवाब होता है, बिना जल्दी, बिना शोर। तो आइए इसी एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म कारवा का एक खूबसूरत सा गीत, कदम, जिसे गाया

तो दोस्तों, आज की इस बातचीत से बस एक ही बात याद रखिए, बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होता है। एक अच्छी आदत, एक अच्छा विचार, एक अच्छी मुस्कान, एक अच्छा निर्णय, ये सब मिलकर जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। इसीलिए आज खुद से एक वादा कीजिए, हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाओगे, क्योंकि छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लाते हैं। इसी उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए विचार और एक नई प्रेरणा के साथ। नमस्कार, आप सुन रहे थे युवा मित्रों के लिए विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये प्रसारण आप आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा से सुन रहे थे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोता मित्रों, सुर मधुरी कार्यक्रम में आज हूँ आपने साथ बात कर रही छूँ राग भूपाली आधारित बॉलीवुड फिल्म ना गीतों ने। कार्यक्रम में हवे सांभळी सिलसिला फिल्म नु गीत लता मंगेशकर अने किशोर कुमार ना स्वर में। जावेद अख्तर ने गीत रचना छे अने संगीत शिव हरिनू।

0: શ્રોતા મિત્રો, આ સાથે જ ગેરફિલ્મી ગુજરાતી ગીતોનો કાર્યક્રમ સમાપ્ત થયો. આપ સાંભળી રહ્યા છો આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્રનું પ્રસારણ. થોડી જ વારમાં, એટલે કે બરાબર 8:45 સમાચાર સંધ્યામાં હિન્દીમાં સમાચાર સાંભળીશું આકાશવાણીના દિલ્હી કેન્દ્રથી, અને ત્યારબાદ 9 ન્યૂઝ એટ 9.
1: નમસ્કાર. આકાશવાણી સે સમાચાર સંધ્યા કે સાથ મેં લવલી નિગમ. भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत. दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया. उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया. पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा. मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2-3 में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया. और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी. अब समाचार विस्तार से. भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए. इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए. दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया. एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है. दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की. वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है.
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की. भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं.
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम

0: पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट UG पुनर्परीक्षा के

सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की सीबीआई हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96.83 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम

0: फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defence and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honour, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defence, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: मिस्टर मोदी सेड इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 विल प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल एंड फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर बायलैटरल टाइज। ही सेड बोथ साइड्स आर वर्किंग टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग एन इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर एंड नोटेड दैट द इंडिया इटली डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप हैज ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन इन द डिफेंस सेक्टर।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: उन्हें जीते जी अमर कर देता है। फिल्मों में गिरीश कर्नाड को हमने चरित्र अभिनेता के रूप में देखा, निशांत, स्वामी, मंथन, अपने पराए, मेरी जंग, सुर संगम के तो वे नायक थे, परंतु मूलतः गिरीश सच्चे साहित्यकार और रंगकर्मी थे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल माथेरान में हुआ था, मगर उनकी माँ कृष्णाबाई और पिता डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड कन्नडिगा थे, अर्थात कर्नाटक के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा मराठी में हुई। आगे जब वो परिवार कर्नाटक के सिरसी गांव में रहने लगा, तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहां के लोकनाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 बरस के थे, तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहां उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैग्डलेन शहर में रहकर उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री हासिल की।
1: सर,

0: वहाँ के लोक नाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 बरस के थे तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहाँ उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैग्डलिन शहर में रहकर उन्होंने फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री हासिल की।
1: सर,

1963 में भारत लौटने के बाद गिरीश कर्नाड चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम करने लगे। अब भी नाटकों और लोक कलाओं के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। चेन्नई में रहते हुए गिरीश कर्नाड द मद्रास प्लेयर्स नामक नाटक मंडली से जुड़ गए। विदेश जाने से पहले ही 1961 में गिरीश कर्नाड ने जब लिखना शुरू किया था, ये वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिलती थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। सी राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूं, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया। नाटक तैयार हुआ ययाति। पांडवों के पूर्वज ययाति पर केंद्रित ये नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना अगला नाटक लिखा तुगलक। 14वीं सदी के दिल्ली के इस सुल्तान की कहानी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासन के महत्वाकांक्षी आदर्शवाद का बुलबुला बड़ी सहजता से दर्शाया गया था इस नाटक में। गिरीश कर्नाड को एक नजरिया मिल गया था, कहानी के स्रोत इतिहास या पुराणों से लेना और समकालीन विषयों तथा आधुनिक मानव की अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई के साथ उसे जोड़ देना। मात्र 26 वर्ष की आयु में गिरीश कर्नाड एक उदीयमान प्रतिभाशाली लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे। सन 1971, गिरीश कर्नाड के कला जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं। एक और 11वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर से ली गई एक कहानी पर आधारित नाटक हैवदन का निर्माण और दूसरी ओर SL भैरप्पा के उपन्यास पर बनी फिल्म वंश वृक्ष का निर्देशन। लोकनाट्य यक्षगान के सांचे में ढलकर नाटक हैवदन का सफल मंचन हुआ और खूब सराहना मिली। ये नाटक जर्मन भाषा में भी अनुवादित हुआ। उसका निर्देशन किया जानी मानी निर्देशिका विजया मेहता ने। यूं तो 1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया था। निर्देशक के रूप में गिरीश कर्नाड की पहली फिल्म थी वंश वृक्ष, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने साझा किया BV कारंत के साथ। आगे कई कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है, 1977 में गिरीश कर्नाड ने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो फिल्म थी गोधूली और 1984 में शशि कपूर निर्मित फिल्म उत्सव।

जी हाँ, क्यों न बजे मृदंग मन में और क्यों न खनके मंजीरा अंग अंग में, जब लेखन और निर्देशन के साथ साथ गिरीश कर्नाड के नाम का डंका अभिनय के क्षेत्र में भी बजने लगा। तब्बलियु नीनदे मगने, ओंदनंदु कलदल्ली, चेलुवी, काडू, कोन्नुरु हेगदित्ति, ये हैं कुछ प्रमुख कन्नड़ फिल्मों के नाम जिनमें गिरीश कर्नाड ने अभिनय किया है। उनके अभिनय से सजी हिंदी फिल्मों की तो एक लंबी फहरिस्त है। जादू का शंख, निशांत, मंथन, स्वामी, जीवन मुक्त, संपर्क, रत्नदीप, बेकसूर, आशा, मनपसंद, अपने पराए, क्षमा, तेरी कसम, आनंद भैरवी, एक बार चले आओ, तराना, जमाना, मेरी जंग, सुरसंगम, सूत्रधार, आकर्षण, मिल गई मंजिल मुझे, चैतन्य, ब्रह्म, अंतर्नाद, गुना, प्राणदाता, आतंक, चाइना गेट, AK-47, पुकार, इकबाल, डोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, लाइफ गोज ऑन, एक था टाइगर, शिवाय, चौक एंड डस्टर और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम, जो तेलुगु में शंकराभरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार शानदार अभिनय कैसे भुलाया जा सकता है।

1980 के दशक में कलाकारों के लिए एक और मार्ग प्रशस्त हुआ, दूरदर्शन का। नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार आर के नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुड़ी डेज, जिसका नायक था एक नन्हा सा नटखट बालक स्वामी। इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की

0: साथी गिरीश कर्नाड ने।
1: पिताजी कॉफी, मुझे मुझे आपका कमरा चाहिए।
2: किस लिए?
1: मेरा एक दोस्त आ रहा है।
2: तो तुम्हारा अपना कमरा है, वही ले।
1: राजम को वहाँ कैसे ले जाऊँ?
2: ये राजम है कौन, इतना बड़ा आदमी?
1: डीएसपी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है वो।
2: अच्छा ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मेज पर रखी हुई चीजों को हिलाना नहीं।
1: बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं।
0: दूरदर्शन के ही एक कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका टर्निंग पॉइंट के सूत्रधार के रूप में भी हमने गिरीश कर्नाड को देखा है।

1971 से लेकर 1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमट्टू माले और तालेदंड, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्मभूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अन्यान्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा तब्बली यू नीनदे मगने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ।

ओंदनंदु कलदल्ली। कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का उन्हें पुरस्कार मिला 1978 में। कन्नड़ भाषा के एक संत कवि कनक पुरंदर पर उन्होंने एक वृत्त चित्र का निर्माण किया था। इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया 1989 में। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार के कई सम्मान उन्हें मिले तथा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी गिरीश कर्नाड को मिले साहित्य एवं फिल्मों की।

10 जून 2019 भारतीय रंगमंच और सिनेमा तथा कन्नड़ साहित्य जगत के आकाश से एक चमकता सितारा अस्त हुआ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था लेखक निर्देशक एवं अभिनेता गिरीश कर्नाड पर।
1: आज के फनकार।

0: और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership.

उसकी आंखों में हमेशा बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी। बिजली की तरह नाचता हो

पहचाना? मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

उस रोज रात भर शनि बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

शब्द रचना डॉक्टर विनोद दवे, संगीत नियोजन श्री यश अंताणी। भाग लेनार कलाकारों छे सर्वश्री भारतेंदु माकड़, राजेश पढ़ारिया, प्रगति वोरा, काजल छाया तथा अर्चना चौहान। वाद्यवृंद सर्वश्री कासम सोरठिया, अब्दुल खावरा, चिराग वोरा, निर्मल संघवी, महेश दवे तेमज फजल सोरठिया।